0: शुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजामि पाप्मा भूया सग्गस्वाहा
1: स्वाहा
0: देभ्यो देवेभ्य स्वाहा
1: भूवाय भूमाय स्वाहा
0: सुदक्षितये स्वाहा
1: सुदक्षित